दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई। तुम करता करना मैं ना ही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जो जोत मह जाता कल कला पर पूर रहा। तू सच्चा साफ सिर्फ सवाल।

पुरी चतुर्दश कंत काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

काश भेद ना जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए।

स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो राण खाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम

तेरा साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा गुरु बाण कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै,

तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संता

धन्यवाद संगत जी, मेरा मन कर रहा है पूरी अष्टपदी का कीर्तन हो जाए तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि सारियां तुकां तुहाडे सामने लिखियां ने। पाठ तो बड़ी बारी करते हैं, थोड़ी विचार हो जाएगी। पंजाबी विच, इंग्लिश विच अर्थ लिखे आए ने, हिंदी विच भी ने, सो कुछ पल्ले पै जाएगा और रल के पढ़ दें।

सत्संग जी के एक तो एक बारी पढ़नी ठीक नहीं लगती, थोड़ा फोकस शायद से ना हो, सो असी दो दो बारी पढ़ लेने हैं। पर जरूरी है, मैं देखा कई बार ना सहज पाठ भी हो रहा हुंदा है, स्क्रीन ते लिखा भी हुंदा है, पर कई बार लोग स्क्रीन तो ना मुंह दूजे पासे करके बैठ जाते हैं। जिवें हुंदा ना कि माता पिता कोई चीज बोल रहे ने, कोई वड्डा भरा वड्डी भैन कोई सियाणा कुछ बोल रहा, तो असी दो गल ही ना सुनीए, कान दूजे पासे कर लीए, टीवी लगा के मैं उधर फोकस कर लिया। सो उस तरह नहीं चाहिए, ये तुहाडे लई स्क्रीन लगी है, बहुत खर्चा होया इन्हां दे उपर। गुरुद्वारा कितना आलीशान बनिया है, दो बिल्डिंगा होर बन रही ने, यह साडे सारिया वसंगत वास्ते हो रहा सारा कुछ। सो कोशिश करिया करिए, स्क्रीन ते लिखिया जितना कुछ पढ़ के समझ सकते हैं समझन का जतन करिए, अंदर बैठ जाए, भरोसा बन जाए और रल के पढ़ते हैं।

जय प्रसाद तू प्रगट संसार। सतगुरु जी मेहरां बख्शां करन, इलाही बाणी दा कीर्तन करदियां होईयां भुल्लां गलतियां सतगुरु बख्श लैण, बाणी दा भाव साडे हिरदे अंदर वसाउण। हुण गुरु के प्यारे अखंड कीर्तन जथे दे सिंह सिंघणियां इलाही बाणी दे कीर्तन नाल सिमरन नाल सानूं जोड़नगे जी। प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।

जय कर कीर्ति आखी है करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहेला सिर सजनहारो तुम गावो मेरे निरपाव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमण समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन सिसड़िया।

पूरब लिखत लिखे गुर पाया मरण हरलिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जाने आत निअंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाव है

माया कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म सदा पूर सदा सदा प्रभ के मन गाव सा सद प्रभ तुम्हें त्याव चरण कमल सुन के प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत कोटि को अधर नानक मांगन प्रभ सर प्रभ की दृष्ट महासुख होए हार रस पावे बिरला कोय जैन जाकियां से जन तृप्ता ने पूर्ण प्रख ने डोला ने सुपर परे प्रेम रस रंग उपज चाव सदग संग परे सन्नाम सब त्याग अंतर प्रकाश अनदन लिवलाग बड़पागी जपे प्रभ सोय नानक नमृत सुख होय सेवा की मनसा पूरी पहई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेवा की सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मन दुख भ्रम गया अश्वनी सरदा सा पूरी रब रहा सरसंग हजूरी जिसका साथ लिया मिला नान भक्ति नाम सुमाई सो क्यों विसरे जे काल न भन सो क्यों विसरे जी किया जाने सो क्यों विसरे जिन सब किस दिया सो क्यों विसरे जे जीवन जीवन जिया सो क्यों विसरे जगन में रखे गुर प्रसाद गुबरला लखे सो क्यों विसरे जी व्यक्ति कड जन्म जन्म का टूटे घड गुर पूरे ताते है बुझाया पर अपना नानक जन ते आया साजन संत करो काम आन त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावु आप जपो अपर नम जपावु भगत पाए त्रिय संसार बेन भक्ति तन हो सिशार सर्व कल्याण सुख निध नाम गूढ़ ते जद पाए विश्राम सगल दुख कहो विनाश नानक नाम जप गुण दास उपजी प्रीत प्रेम रस चाहु मान तन अंतर है सुवाऊ नेत्र वेग दर्शक होय मन विकसे सा चरण तोय भगत ना कै मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे गरमया गुर प्रसाद नाम जप लिया ता कि उपमा कही न जाय नानक रे सर्व सुमाय प्रभक संदीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुष कारण करता भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोहे पुनीत भगत पाए लावे मन हीर हम निर्गुण यार नीतियां जान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर वैकुंठ मुक्त मुख पा एक निम करके गुण गाय अनक राज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मान पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नी

पूरे के गुण गावष्टपदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सास सास स्मरो गोविंद मान अंतर की उतरे चिंद आस अनैत त्यागो तरंग

हद वजे सुन सुन अनंत गिरि प्रभु गज प्रगटे गोपाल महान के मथे नानक उद्रितन के साथे सरन जो कृष्ण सरने आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संगलेन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बिगाते रहते राम नावसन रसन कहते कर प्रसाद प्रभतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करहो संत मीत साविधान गागर जी सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मानव सह सोहत निधान सर्वचता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊज पाय स्थान बहुन होवे अमन जान हर तन खर्च लै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रित नव निद बुत ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पतत गमन पुरगा सब कै मद सगल त्यों उदास सुंदर चतुर तत्का देता समदृष्टि समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जब मन कोई सब जुग मह ताँ की गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत सासुर भेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सत्संग मिटै

अपने मन कोए पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान।

असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख

एक है। भुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्त निदाने नमो देव देवी अपेकी भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथ इंद्र संगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती विभूते एकलंकंग बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम बिरदे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखीय परमीय भोगी भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत दिवे सुतर।

मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो अर्ध अर्धंग अगंग उघर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोष्पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदीय पेदीय नामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ताम।

अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्त निधाने नमस्तुंग दृढ़नाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साहसाजे नमो साहसाह नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृशंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे स्मसंग प्रसिद्धे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिदंग निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखाल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखाल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल शांतत्व प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप विशाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार।

है पवित्र है प्रतिश है अधीश है अदृश है अकृश है भगवती शांतत्व प्रसाद कथते के आशिज दिशा है कि आभिज पेशा है कि आगंज कर्म है कि आपज भरम है कि आभिज लोक है कि आदित सोक है कि अवधूत वर्ण है कि विभूत करण है कि राजन प्रभा है कि त्रमंग तुझा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वापरण है कि जगदंकृति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म

केसर पत्र काजा है, केसर पत्र राजा है, केसर पत्र सोखा है, केसर पत्र पोखा है, केसर पत्र त्राण है, केसर पत्र प्राण है, केसर पत्र देसा है, केसर पत्र पेशा है, केसर पत्र मान्य है, सदैव प्रधान है, केसर पत्र जापया है, केसर पत्र थापया है, केसर पत्र पान है, केसर पत्र मान है, केसर पत्र इंद्र है, केसर पत्र चंद्र है, केसर मंगलीम है, के परमंग फहीम है, के अकल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसन वजू है, तमाम रजू है, हमेशा सलाम है, सलीखत मदाम है, गनीमुल शिकस्त है।

अनाद स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामेन्द्र त्रिभर्गं त्रिबाध्य अगंजे अगाध्य सुपंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है केन्द्र प्रणास है पृथ्वी प्रवास है।

है, चरपट शांत वह प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणं सर्वंग प्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग कर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल शांत वह प्रसाद। नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी।

है कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अपंग है। मधुपार संत व प्रसाद, मन मन प्रणाम, गुणगन बदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, अनगन

जन्मस्थल प्रणामे स्मस्थल प्रणासे अगंजुल अनामे स्मस्थल निवासे नृकामंग विभूते स्मस्थ स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा स्मस्थल निवासी अजायब विभूते जायब गरिमे हरियंग करियंग करीमद रही मे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते।

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जजू करिए हो रिछा। राख लेहो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुमहो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकार।

वर्णत पिन पिन तुहते ते तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहि भूपा अंडज जीरज सेतज कीनी।

किल बिकसकल देह को हरता दुष्ट दोखिन कोशा करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई।

अनेक जोनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो हो बिन सतगुर मुक्त न पाए।

सदा रह हो हर रंग जपे हो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो हो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी। चित जन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव शक्त आप पाए कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यो चितलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी। गुरु बाजो हो तत्तै सार न जानी, तेहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहाणी। गुर कृपा ते से जन जागे जन्ना हर मन वसिया, बोलहे अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए जिसनो अनदिन हरल विलागै, जागत रहण विहाणी।

कह नानक सृष्टि का मूल रचिया, जोत राखी तांतू जग मह आया। मन चाहो पया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापय। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना बिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

0: पार। कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मधानियान गाह पंखी पौंदियां लैना सा सूए चढ़ पवाई जंत नानक पौंदियां गणत नान
1: मंदर मन पवाए सोए पै कृतन चे सब कोई नच नच हसे चले सर उड़ना जाई सदना होए नचण कुदन मन काचा नानक जिन मन पहुते न

मुसलमाना सिर्फ सरयत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवह विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप पार तीर्थ ना वैरचा पूजा गरवास बहकार जोगी सुन

0: अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख खंदे पत गवाई वे नावे किस थाए न पाई रह बिबाणी मरी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी
1: ते सो सुख पाए हर का नाम अनुसार नानक अंदर कृष पाए आसन दे सिते ने केवल हो मैं शब्द जुलाई
2: पौड़ी पग तेरे मन पाऊं दे।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वह वै मंगे मोख द्वार, जति सदा वै जुक्त न जाने छड़ बह करबार, सबको पूरा पे हो वै काट।

हर बिनकिन सुख पाया देखो मन विचार। हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार, हर जपिए हर त्याई है।

पर सुरती बिरति करके हर वेले निरंकार विच रहिंदा है, उहदे नाल रहिंदा है। सच्चे पातशाह जिन्हें जो मंगिया तुसीं झोली पाया, जिन्हें शरीर तुहाडी हजूरी विच साडे समेत बैठे ने, मेरा दे घर विच आके सच्चे पातशाह झोलियां भरो। हर दुख का इलाज तुहाडे घर विच है, हर सुख का इलाज भी तुहाडा नाम है। जो संसार तो बंदा हार जाए फिर बाबे नानक दे घर विच पुकार सुनी जाती है, फिर बाबा नानक अपने बच्चियां नू खाली नहीं मोड़दा। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, करता तेरे सब किछ है, सब किछ दे विच सारा कुछ ही आ गया, पर जेड़े तेनू पा जांदे ने जिस दे सो पावे, जेड़े तेनू पा गए उन्हां दीयां चोड़ियां तू वडियाईयां इज्जत माण उन्हां दे कारजां विच आप खलो जांदा है। ये पावन पंगतियां गाओ, उन्नू पा जाना ही जिंदगी दा असली मनोरथ है। महाराज दीयां नजरां विच अपनी थां बना लैनी, महाराज की नजर विच उहदे चरणां विच जिउंदिआं जी थां बना लैनी, कहिंदे ने मर के भी थां मिलदी है।

मिल पीवो भाई। कई बारी मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आज जो बारी साडा भेख है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सानू नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोलदी है, कपाट खोलदी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असी सारे गायन करदे हां। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विचों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असी पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तो अंगद तक दा सफर असी सारिया ने तय करना है। और किवें करना है, बाणी दियां पैड़ां बाणी दे स्टेप्स दे उते चल के, नानक अमृत मने मागे, बारी रिचुअल करदिया करदिया कई बारी असी मन की खेड नूं भुल जाने, पर गुरु पातशाह